0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, संत पापा लियो 14वें ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Nell'enciclica Mediator Dei, il venerabile Pio XII scrive che la Chiesa è un organismo vivente.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात और सुस्वागतम। विश्व पत्र मीडिएटर देई में आराध्य संत पापा पियूस 12वें लिखते हैं, इसमें संदेह नहीं कि कलीसिया एक जीवित इकाई है और इस सजीव इकाई स्वरूप पवित्र धर्म विधि के संदर्भ में भी वह विकसित होती, प्रौढ़ता को प्राप्त करती, प्रगति करते हुए समय की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढाल लेती है, बशर्ते धर्म विधि के धर्म सिद्धांत की देखरेख की जाती हो। इस सिद्धांत के पूर्ण अनुपालन में द्वितीय वैटिकन महासभा धर्म सिद्धांत साक्रो सांतुम कॉन्सिलियम के परिचय में इस बात का उल्लेख किया गया है, धर्म विधि में सुधार और उसे बढ़ावा देने के लिए खास तौर पर ठोस कारणों का पहचान किया जाता है। वास्तव में धर्म सभा के अभियोजन का उद्देश्य विश्वासियों को ख्रिस्तीय जीवन जीने हेतु एक उत्साह प्रदान करना है, समय की मांग के अनुरूप संस्थानों में परिवर्तन पर ध्यान देना, उन बातों को बढ़ावा देना जो ख्रिस्तीय विश्वासियों में एकता की भावना को प्रोत्साहित करती हो तथा सारी मानव जाति को कलीसिया में संग्रहित करने वाली बातों को मजबूती प्रदान करना है। संत पापा लियो ने कहा कि इतिहास के उन क्षणों में धर्म विधि के क्रियाकलापों में नवीनीकरण लाने हेतु एक गहरी आवश्यकता की अनुभूति हुई, जिसके द्वारा सदियों तक कलीसिया ने ईश्वर की महिमा और ख्रिस्तियों के पवित्रीकरण हेतु कार्य किया। हम धर्म विधि के संबंध में हुए आंदोलनों के प्रति कृतज्ञता के भाव प्रकट करते हैं, जिनके द्वारा विश्वास में सुदृढ़ता आई, जिनके संबंध में संत पापा द्वितीय ने बाद में कहा कि धर्म विधि और कलीसियाई जीवन के नवीनीकरण के बीच एक अति घनिष्ठ और मूलभूत संबंध है। कलीसिया पूजन विधि में न केवल कार्य करती है बल्कि उसके द्वारा खुद को भी प्रकट करती है। वह पूजन विधि के द्वारा जीवित रहती और अपने जीवन के लिए शक्ति हासिल करती है। संत पापा लियो ने कहा कि विश्वासियों को धर्म विधि में मिलने वाले समृद्ध कृपा दानों की ओर अभिमुख करने हेतु धर्म सिद्धांत साक्रो कॉन्सिलियम एक प्रभावकारी वाक्यांश कहता है,
2: Conservare la sana tradizione e aprire a un legittimo progresso.
1: अच्छी परंपरा को बनाए रखा जाए यद्यपि उसमें संवैधानिक विकास का मार्ग खुला रहे। संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने इस घोषणा में निहित उद्देश्य को समझा जो धर्म सभा के आचार्यों में नवीनता हेतु कार्यक्रम को व्यक्त करता है। परंपरा से चली आ रही वृहद धर्म विधि और भविष्य की धर्म विधि के मध्य एक संतुलन, इस बात का ध्यान रखते हुए कि परंपरा और प्रगति बहुधा बेढंगे रूप में विरोधात्मक होते हैं, जबकि वास्तव में दो तथ्यों का मिलन होता है। परंपरा अपने में एक सजीव सच्चाई है जो अपने में विकास के सिद्धांत को वहन करती है। यह मानो यह कहने की भांति है कि परंपरा की नदी स्वयं में स्रोत को वहन करती और अपने में बाहर की ओर बहती है। संत पापा लियो ने कहा कि धर्म सभा इस प्रगति की वैधता को सुदृढ़ता प्रदान करती है जो वास्तविक परंपरा में जुड़ी हुई है। पूजन विधि में ईश्वर द्वारा स्थापित अपरिवर्तनीय तत्वों और परिवर्तनशील तत्वों में अंतर करते हुए, जो समय के साथ न केवल बदले जा सकते हैं बल्कि बदले भी जाने चाहिए, अगर उनमें किसी ऐसी चीज का प्रवेश हो गया है जो पूजन विधि के अंदरूनी स्वभाव से मेल नहीं खाती या उसके लिए अनुपयुक्त हो गई है। इस तरह के परिवर्तनों को सदियों में निरंतर देखा गया है, जिनके द्वारा विश्वासियों की सहभागिता धार्मिक क्रियाकलापों में ख्रीस्त के पास का रहस्य में फलदायक बन सके, जो ख्रीस्तीय विश्वास का मूलभूत आधार है। कलीसिया की आराधना इस भांति हर युग के सांस्कृतिक स्वरूपों को अपने में वहन करती है और उन्हें प्रभावित करते हुए उन्हें परिवर्तित भी करती है। इस तरह धर्मविधि सदियों से हमारे लिए सुसमाचार प्रचार करने का एक साधन बनता है। आज हमारे लिए इस शक्ति को वर्तमान सच्चाई और सजीव कैथोलिक परंपरा के अनुरूप नवीन बनाने की जरूरत है, अर्थात इस आयाम के संग जो विश्वासियों को पूर्ण सत्य की खोज हेतु प्रेरित करता है। संत पापा ने कहा, अतः हम इस बात को समझते हैं कि क्यों धर्म सभा के आचार्यों ने धर्म विधि के पुनरालोकन की बात कही, जब सच्ची कलीसिया की भलाई हेतु उसकी जरूरत निश्चित रूप में होती है। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि अपनाया गया कोई भी नया रूप किसी न किसी तरह से पहले से मौजूद रूपों में स्वाभाविक रूप से विकसित होती हो। संपूर्ण कलीसिया की भलाई हेतु हर नवनीकरण को चाहिए कि वह सदैव सावधानी पूर्वक ईश शास्त्रीय इतिहास और प्रेरिताई की खोज करे। धर्म सभा का धर्म सिद्धांत इस भांति हमें विश्वासियों के बीच भ्रम को दूर करने की बात कहता है। यह हर किसी को सम्माहित करने हेतु प्रोत्साहित नहीं करता, धर्म विधि के संबंध में उन बातों को हटाने या बदलने की बात कहता है जो व्यक्तिगत पहल से शुरू की गई है। धर्म सिद्धांत में प्रगति कलीसिया की एकता से कोई समझौता नहीं करना है, बल्कि यह उसे सुदृढ़ करने और उसे बढ़ावा देने की कोशिश करना है। संत पापा ने कहा,
2: Esorto pertanto tutti coloro che sono chiamati a preparare la celebrazione dei divini misteri, in particolare i sacerdoti che esercitano il ministero della presidenza liturgica, a custodire sempre quel rispetto dei testi e degli
1: अतः मैं उन सभी लोगों से निवेदन करता हूँ जो दिव्य रहस्य का समारोह मनाने की तैयारी करते हैं, विशेषकर पुरोहितों के लिए जो धर्म विधि की अगुवाई करते हैं। पूजन विधि के पाठ और नियमों के प्रति हमेशा सम्मान को बनाए रखें, जो आंतरिक खुलेपन और ईश्वर पर भरोसा से उत्पन्न होते हैं, जिनमें हम ईश्वर की महानता के सामने विनम्रता और कलीसिया के प्रति सच्ची निष्ठा को व्यक्त करते हैं। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारी प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें की स्पेन की प्रेरित यात्रा से 2 हफ्ते से भी कम समय पहले आज बुधवारीय आम दर्शन समारोह से पहले संत पापा ने वाटिकन में स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज पेरेज कास्टेजोन से मुलाकात की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन और वाटिकन विदेश सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गल्लाघर से भी मुलाकात की। वाटिकन प्रेस कार्यालय के अनुसार वाटिकन सचिवालय में हुई बातचीत में संत पापा की आने वाली यात्रा पर खुशी जताई गई और इसे परम धर्म पीठ और स्पेन के बीच अच्छे रिश्तों की निशानी बताया गया। और बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो 14वें ने यूक्रेन पर रूस के हाल के हमलों के बाद शांति की अपील की और इस बात पर जोर दिया कि युद्ध से समस्याएं हल नहीं होती, इससे वे और बिगड़ जाती हैं, क्योंकि जहां भी मिसाइलें और ड्रोन गिरते हैं वहां उम्मीद भी टूट जाती है, घर और पूजा के स्थान तबाह हो जाते हैं और बेगुनाह लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। संत पापा ने युद्ध में घायल सभी लोगों को शांति की रानी कुंवारी मां मरियम की सुरक्षा में सौंप दिया। इसके बाद संत पापा ने अरबी और फ्रेंच बोलने वाले श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए लेबनानी तीर्थयात्रियों को भी खास शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, हमारी माँ मरिया हमेशा हमारे साथ रहती हैं, हमारे लिए प्रार्थना करती हैं और माँ के प्यार से देखभाल करती हैं। संत पापा ने कहा, प्रभु आपको आशीर्वाद दें और हमेशा हर बुराई से बचाएं। सभी माताओं को धन्यवाद अपने बच्चों को ईश्वर से प्यार करना सिखाने के लिए। अंत में पोलिश तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए संत पापा लियो 14वें ने माताओं को धन्यवाद दिया और उन्होंने याद किया कि पोलैंड ने कल माताओं का दिवस मनाया था। उन्होंने कहा, मैं उन सभी माताओं को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने उदारता से अपने बच्चों को जीवन और देखभाल का तोहफा दिया है, उन्हें ईश्वर और अपने पड़ोसी से प्यार करना सिखाया है। संत पापा ने प्रार्थना की कि ईश्वर की मां मरियम उनके लिए बीच बचाव करें ताकि उन्हें यीशु के साथ एक स्थायी बंधन की कृपा मिल सके। संत पापा ने पोलैंड के लोगों से अपने देश में गर्भधारण से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक हर व्यक्ति के जीवन की रक्षा करने का आग्रह किया। और मंगलवार शाम को कास्टेल गंडोल्फो के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए संत पापा लियो 14वें ने गाजा में मानवीय सहायता के लिए अपनी अपील दोहराई। युद्ध में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी, जो इंसानी जिंदगी की परवाह नहीं करता, और एआई कंपनी एंथ्रोपिक के साथ चल रही बातचीत पर जोर दिया। गाजा जाने वाले ग्लोबल सुमुद फ्लोटिल्ला में शामिल कार्यकर्ताओं के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए, जिनमें से कुछ को हथकड़ी और आंखों पर पट्टी बांधने की खबरें थीं, संत पापा ने कहा कि हमें हर व्यक्ति के मानव अधिकार के सम्मान के लिए अपनी अपील फिर से दोहरानी चाहिए। संत पापा ने गाजा में आम लोगों की लगातार तकलीफ पर दुख जताया और कहा, दुर्भाग्य से गाजा के लोगों को अभी भी मानवीय मदद नहीं मिल रही है। संत पापा ने समझाया कि यह स्थिति विरोध प्रदर्शनों को भड़का रही है और उनके साथ मुश्किलें भी पैदा कर रही हैं, जिसमें फ्लोटिल्ला के लोग भी शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं इसे सिर्फ एक आमंत्रण के तौर पर नहीं बल्कि सच में एक अपील के तौर पर दोहराना चाहता हूँ और सभी अधिकारियों से गाजा के लोगों की मदद करने और उनके पास जाने और फिर से बनाने का काम शुरू करने में मदद करने की गुजारिश करता हूँ। जब पूछा गया कि बिना हथियार वाले शांति कार्यकर्ताओं को हिंसा का सामना करना पड़ता है तो इसका क्या मतलब होता है, संत पापा लियो ने और नफरत को बढ़ावा देने के खतरे के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा, हम और ज्यादा नफरत भड़का रहे हैं, और कहा कि हिंसा से कोई मदद नहीं मिलती, किसी भी तरफ से नहीं। इसके बजाय संत पापा ने हमेशा सभी के मानव अधिकारों का सम्मान करते हुए बातचीत पर लौटने और बातचीत के जरिए समस्याओं का हल करने की जरूरत पर जोर दिया।
लेबनान समेत हाल के झगड़ों का जिक्र करते हुए संत पापा ने कहा कि आज मानव जीवन के बारे में सोचे बिना एआई से जंग लड़ी जा रही है, जो असल में इन सब का शिकार हैं। इसे ध्यान में रखते हुए संत पापा ने शांति के लिए अपनी अपील दोहराई, जिसे उन्होंने निहत्था कृत्रिम बुद्धिमता बताया और उसे आगे बढ़ाने की जरूरत के बारे में बात की। उधर यूक्रेनी एयरफोर्स के मुताबिक कल दोपहर और आज सुबह के बीच एयर डिफेंस ने मास्को के लॉन्च किए गए 163 ड्रोन में से 150 को बेअसर कर दिया। दूसरे 8 ड्रोन इंटरसेप्ट नहीं किए जा सके और उन्होंने 7 अलग अलग जगहों पर हमला किया। सबसे ज्यादा असर चेरनिहाइव इलाके पर पड़ा, जो बेलारूस और रूस के बॉर्डर पर है। अपनी तरफ से कीव ने क्रीमिया में सेवस्तोपोल पोर्ट पर हमला किया, जिसमें ड्रोन और मिसाइल दोनों का इस्तेमाल किया गया, जो फ्रैंको ब्रिटिश कंसोर्सियम की बनाई लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें हैं। शहर के गवर्नर मिखाइल के टेलीग्राम पर दिए गए एक बयान के अनुसार रूसी एयर डिफेंस ने 20 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए। उन्होंने बताया कि शुरुआती डेटा के अनुसार कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। उधर युद्ध विराम लागू होने के बावजूद इसराइल ने घोषणा की है कि वह दक्षिणी लेबनान में अपनी कार्रवाई तेज कर रहा है, ताकि वह जिसे प्रतिरोधी जोन मानता है उसे मजबूत कर सके और इस तरह अपने देश के उत्तरी हिस्से की रक्षा कर सके। स्थानीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कम से कम 31 लोग मारे गए हैं, जिनमें 4 बच्चे, 3 महिलाएं और 1 बचावकर्मी शामिल है। गाजा में भी हमले फिर से शुरू हो गए। इस बीच गाजा शहर में कम 2 नए इजरायली सेना के हमले हुए हैं, खास तौर पर रिमल इलाके के खिलाफ, जिसमें हमास के हथियारबंद विंग के नए हेड मोहम्मद ओहेद मारे गए, जो 7 अक्टूबर 2023 के हमले के दौरान पहले से ही इंटेलिजेंस के हेड थे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, संत पापा लियो 14वें ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Nell'enciclica Mediator Dei, il venerabile Pio XII scrive che la Chiesa è un organismo vivente.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात और सुस्वागतम। विश्व पत्र मीडिएटर देई में आराध्य संत पापा पियूस 12वें लिखते हैं, इसमें संदेह नहीं कि कलीसिया एक जीवित इकाई है और इस सजीव इकाई स्वरूप पवित्र धर्म विधि के संदर्भ में भी वह विकसित होती, प्रौढ़ता को प्राप्त करती, प्रगति करते हुए समय की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढाल लेती है, बशर्ते धर्म विधि के धर्म सिद्धांत की देखरेख की जाती हो। इस सिद्धांत के पूर्ण अनुपालन में द्वितीय वैटिकन महासभा धर्म सिद्धांत साक्रो सांतुम कॉन्सिलियम के परिचय में इस बात का उल्लेख किया गया है, धर्म विधि में सुधार और उसे बढ़ावा देने के लिए खास तौर पर ठोस कारणों का पहचान किया जाता है। वास्तव में धर्म सभा के अभियोजन का उद्देश्य विश्वासियों को ख्रिस्तीय जीवन जीने हेतु एक उत्साह प्रदान करना है, समय की मांग के अनुरूप संस्थानों में परिवर्तन पर ध्यान देना, उन बातों को बढ़ावा देना जो ख्रिस्तीय विश्वासियों में एकता की भावना को प्रोत्साहित करती हो तथा सारी मानव जाति को कलीसिया में संग्रहित करने वाली बातों को मजबूती प्रदान करना है। संत पापा लियो ने कहा कि इतिहास के उन क्षणों में धर्म विधि के क्रियाकलापों में नवीनीकरण लाने हेतु एक गहरी आवश्यकता की अनुभूति हुई, जिसके द्वारा सदियों तक कलीसिया ने ईश्वर की महिमा और ख्रिस्तियों के पवित्रीकरण हेतु कार्य किया। हम धर्म विधि के संबंध में हुए आंदोलनों के प्रति कृतज्ञता के भाव प्रकट करते हैं, जिनके द्वारा विश्वास में सुदृढ़ता आई, जिनके संबंध में संत पापा द्वितीय ने बाद में कहा कि धर्म विधि और कलीसियाई जीवन के नवीनीकरण के बीच एक अति घनिष्ठ और मूलभूत संबंध है। कलीसिया पूजन विधि में न केवल कार्य करती है बल्कि उसके द्वारा खुद को भी प्रकट करती है। वह पूजन विधि के द्वारा जीवित रहती और अपने जीवन के लिए शक्ति हासिल करती है। संत पापा लियो ने कहा कि विश्वासियों को धर्म विधि में मिलने वाले समृद्ध कृपा दानों की ओर अभिमुख करने हेतु धर्म सिद्धांत साक्रो कॉन्सिलियम एक प्रभावकारी वाक्यांश कहता है,
2: Conservare la sana tradizione e aprire a un legittimo progresso.
1: अच्छी परंपरा को बनाए रखा जाए यद्यपि उसमें संवैधानिक विकास का मार्ग खुला रहे। संत पापा बेने

0: बेनेडिक्ट 16वें ने इस घोषणा में निहित उद्देश्य को समझा जो धर्म सभा के आचार्यों में नवीनता हेतु कार्यक्रम को व्यक्त करता है। परंपरा से चली आ रही वृहद धर्म विधि और भविष्य की धर्म विधि के मध्य एक संतुलन, इस बात का ध्यान रखते हुए कि परंपरा और प्रगति बहुधा बेढंगे रूप में विरोधात्मक होते हैं, जबकि वास्तव में दो तथ्यों का मिलन होता है। परंपरा अपने में एक सजीव सच्चाई है जो अपने में विकास के सिद्धांत को वहन करती है। यह मानो यह कहने की भांति है कि परंपरा की नदी स्वयं में स्रोत को वहन करती और अपने में बाहर की ओर बहती है। संत पापा लियो ने कहा कि धर्म सभा इस प्रगति की वैधता को सुदृढ़ता प्रदान करती है जो वास्तविक परंपरा में जुड़ी हुई है। पूजन विधि में ईश्वर द्वारा स्थापित अपरिवर्तनीय तत्वों और परिवर्तनशील तत्वों में अंतर करते हुए, जो समय के साथ न केवल बदले जा सकते हैं बल्कि बदले भी जाने चाहिए, अगर उनमें किसी ऐसी चीज का प्रवेश हो गया है जो पूजन विधि के अंदरूनी स्वभाव से मेल नहीं खाती या उसके लिए अनुपयुक्त हो गई है। इस तरह के परिवर्तनों को सदियों में निरंतर देखा गया है, जिनके द्वारा विश्वासियों की सहभागिता धार्मिक क्रियाकलापों में ख्रीस्त के पास का रहस्य में फलदायक बन सके, जो ख्रीस्तीय विश्वास का मूलभूत आधार है। कलीसिया की आराधना इस भांति हर युग के सांस्कृतिक स्वरूपों को अपने में वहन करती है और उन्हें प्रभावित करते हुए उन्हें परिवर्तित भी करती है। इस तरह धर्म विधि सदियों से हमारे लिए सुसमाचार प्रचार करने का एक साधन बनता है। आज हमारे लिए इस शक्ति को वर्तमान सच्चाई और सजीव कैथोलिक परंपरा के अनुरूप नवीन बनाने की जरूरत है, अर्थात इस आयाम के संग जो विश्वासियों को पूर्ण सत्य की खोज हेतु प्रेरित करता है। संत पापा ने कहा, अतः हम इस बात को समझते हैं कि क्यों धर्म सभा के आचार्यों ने धर्म विधि के पुनरालोकन की बात कही, जब सच्ची कलीसिया की भलाई हेतु उसकी जरूरत निश्चित रूप में होती है। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि अपनाया गया कोई भी नया रूप किसी न किसी तरह से पहले से मौजूद रूपों में स्वाभाविक रूप से विकसित होती हो। संपूर्ण कलीसिया की भलाई हेतु हर नवनीकरण को चाहिए कि वह सदैव सावधानी पूर्वक ईश शास्त्रीय इतिहास और प्रेरिताई की खोज करे। धर्म सभा का धर्म सिद्धांत इस भांति हमें विश्वासियों के बीच भ्रम को दूर करने की बात कहता है। यह हर किसी को सम्माहित करने हेतु प्रोत्साहित नहीं करता, धर्म विधि के संबंध में उन बातों को हटाने या बदलने की बात कहता है जो व्यक्तिगत पहल से शुरू की गई है। धर्म सिद्धांत में प्रगति कलीसिया की एकता से कोई समझौता नहीं करना है, बल्कि यह उसे सुदृढ़ करने और उसे बढ़ावा देने की कोशिश करना है। संत पापा ने कहा,
1: Esorto pertanto tutti coloro che sono chiamati a preparare la celebrazione dei divini misteri, in particolare i sacerdoti che esercitano il ministero della presidenza liturgica, a custodire sempre quel rispetto dei testi e degli
0: अतः मैं उन सभी लोगों से निवेदन करता हूँ जो दिव्य रहस्य का समारोह मनाने की तैयारी करते हैं, विशेषकर पुरोहितों के लिए जो धर्म विधि की अगुवाई करते हैं, पूजन विधि के पाठ और नियमों के प्रति हमेशा सम्मान को बनाए रखें, जो आंतरिक खुलेपन और ईश्वर पर भरोसा से उत्पन्न होते हैं, जिनमें हम ईश्वर की महानता के सामने विनम्रता और कलीसिया के प्रति सच्ची निष्ठा को व्यक्त करते हैं। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें की स्पेन की प्रेरित यात्रा से 2 हफ्ते से भी कम समय पहले आज बुधवारीय आम दर्शन समारोह से पहले संत पापा ने वाटिकन में स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज पेरेज कास्टेजोन से मुलाकात की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन और वाटिकन विदेश सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गल्लाघर से भी मुलाकात की। वाटिकन प्रेस कार्यालय के अनुसार वाटिकन सचिवालय में हुई बातचीत में संत पापा की आने वाली यात्रा पर खुशी जताई गई और इसे परम धर्म पीठ और स्पेन के बीच अच्छे रिश्तों की निशानी बताया गया। और बुधवारी आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो 14वें ने यूक्रेन पर रूस के हाल के हमलों के बाद शांति की अपील की और इस बात पर जोर दिया कि युद्ध से समस्याएं हल नहीं होती, इससे वे और बिगड़ जाती हैं, क्योंकि जहां भी मिसाइलें और ड्रोन गिरते हैं वहां उम्मीद भी टूट जाती है, घर और पूजा के स्थान तबाह हो जाते हैं और बेगुनाह लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। संत पापा ने युद्ध में घायल सभी लोगों को शांति की रानी कुंवारी मां मरियम की सुरक्षा में सौंप दिया। इसके बाद संत पापा ने अरबी और फ्रेंच बोलने वाले श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए लेबनानी तीर्थयात्रियों को भी खास शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, हमारी माँ मरिया हमेशा हमारे साथ रहती हैं, हमारे लिए प्रार्थना करती हैं और माँ के प्यार से देखभाल करती हैं। संत पापा ने कहा, प्रभु आपको आशीर्वाद दें और हमेशा हर बुराई से बचाएं। सभी माताओं को धन्यवाद अपने बच्चों को ईश्वर से प्यार करना सिखाने के लिए। अंत में पोलिश तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए संत पापा लियो 14वें ने माताओं को धन्यवाद दिया और उन्होंने याद किया कि पोलैंड ने कल माताओं का दिवस मनाया था। उन्होंने कहा, मैं उन सभी माताओं को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने उदारता से अपने बच्चों को जीवन और देखभाल का तोहफा दिया है, उन्हें ईश्वर और अपने पड़ोसी से प्यार करना सिखाया है। संत पापा ने प्रार्थना की कि ईश्वर की मां मरियम उनके लिए बीच बचाव करें ताकि उन्हें यीशु के साथ एक स्थायी बंधन की कृपा मिल सके। संत पापा ने पोलैंड के लोगों से अपने देश में गर्भधारण से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक हर व्यक्ति के जीवन की रक्षा करने का आग्रह किया। और मंगलवार शाम को कास्टेल गंडोल्फो के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए संत पापा लियो 14वें ने गाजा में मानवीय सहायता के लिए अपनी अपील दोहराई। युद्ध में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी जो इंसानी जिंदगी की परवाह नहीं करता और एआई कंपनी एंथ्रोपिक के साथ चल रही बातचीत पर जोर दिया। गाजा जाने वाले ग्लोबल सुमुद फ्लोटिल्ला में शामिल कार्यकर्ताओं के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए, जिनमें से कुछ को हथकड़ी और आंखों पर पट्टी बांधने की खबरें थी, संत पापा ने कहा कि हमें हर व्यक्ति के मानव अधिकार के सम्मान के लिए अपनी अपील फिर से दोहरानी चाहिए। संत पापा ने गाजा में आम लोगों की लगातार तकलीफ पर दुख जताया और कहा, दुर्भाग्य से गाजा के लोगों को अभी भी मानवीय मदद नहीं मिल रही है। संत पापा ने समझाया कि यह स्थिति विरोध प्रदर्शनों को भड़का रही है और उनके साथ मुश्किलें भी पैदा कर रही हैं, जिसमें फ्लोटिल्ला के लोग भी शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं इसे सिर्फ एक आमंत्रण के तौर पर नहीं बल्कि सच में एक अपील के तौर पर दोहराना चाहता हूँ और सभी अधिकारियों से गाजा के लोगों की मदद करने और उनके पास जाने और फिर से बनाने का काम शुरू करने में मदद करने की गुजारिश करता हूँ। जब पूछा गया कि बिना हथियार वाले शांति कार्यकर्ताओं को हिंसा का सामना करना पड़ता है तो इसका क्या मतलब होता है, संत पापा लियो ने और नफरत को बढ़ावा देने के खतरे के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा, हम और ज्यादा नफरत भड़का रहे हैं और कहा कि हिंसा से कोई मदद नहीं मिलती, किसी भी तरफ से नहीं। इसके बजाय संत पापा ने हमेशा सभी के मानव अधिकारों का सम्मान करते हुए बातचीत पर लौटने और बातचीत के जरिए समस्याओं का हल करने की जरूरत पर जोर दिया। लेबनान समेत हाल के झगड़ों का जिक्र करते हुए संत पापा ने कहा कि आज
मानव जीवन के बारे में सोचे बिना एआई से जंग लड़ी जा रही है, जो असल में इन सब का शिकार हैं। इसे ध्यान में रखते हुए संत पापा ने शांति के लिए अपनी अपील दोहराई, जिसे उन्होंने निहत्था कृत्रिम बुद्धिमता बताया और उसे आगे बढ़ाने की जरूरत के बारे में बात की। उधर यूक्रेनी एयरफोर्स के मुताबिक कल दोपहर और आज सुबह के बीच एयर डिफेंस ने मास्को के लॉन्च किए गए 163 ड्रोन में से 150 को बेअसर कर दिया। दूसरे 8 ड्रोन इंटरसेप्ट नहीं किए जा सके और उन्होंने 7 अलग अलग जगहों पर हमला किया। सबसे ज्यादा असर चेरनीहाई इलाके पर पड़ा, जो बेलारूस और रूस के बॉर्डर पर है। अपनी तरफ से कीव ने क्रीमिया में सेवस्तोपोल पोर्ट पर हमला किया, जिसमें ड्रोन और मिसाइल दोनों का इस्तेमाल किया गया, जो फ्रैंको ब्रिटिश कंसोर्सियम की बनाई लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें हैं। शहर के गवर्नर मिखाइल के टेलीग्राम पर दिए गए एक बयान के अनुसार रूसी एयर डिफेंस ने 20 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए। उन्होंने बताया कि शुरुआती डेटा के अनुसार कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। उधर युद्ध विराम लागू होने के बावजूद इसराइल ने घोषणा की है कि वह दक्षिणी लेबनान में अपनी कार्रवाई तेज कर रहा है, ताकि वह जिसे प्रतिरोधी जोन मानता है उसे मजबूत कर सके और इस तरह अपने देश के उत्तरी हिस्से की रक्षा कर सके। स्थानीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कम से कम 31 लोग मारे गए हैं, जिनमें 4 बच्चे, 3 महिलाएं और 1 बचावकर्मी शामिल है। गाजा में भी हमले फिर से शुरू हो गए। इस बीच गाजा शहर में कम से कम 2 नए इजरायली सेना के हमले हुए हैं, खास तौर पर रिमल इलाके के खिलाफ, जिसमें हमास के हथियारबंद विंग के नए हेड मोहम्मद ओहेद मारे गए, जो 7 अक्टूबर 2023 के हमले के दौरान पहले से ही इंटेलिजेंस के हेड थे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र

0: मर्मज अमृत को कामयाय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलिसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: ज्योति का पहला भेद, यीशु यर्दन नदी में बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का दूसरा भेद, काना के विवाह भोज में यीशु अपने आप को प्रकट करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का तीसरा भेद, मन परिवर्तन के आह्वान के साथ प्रभु यीशु ईश्वर के राज्य की घोषणा करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का चौथा भेद प्रभु यीशु का रूपांतरण हो जाता है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो।
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: ज्योति का पांचवा भेद, पास का रहस्य के सांस्कारिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रभु येसु पवित्र परम प्रसाद की स्थापना करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुमारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारियों की पवित्र कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।

हमारे मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
2: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन। नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और फादर संजय एक्का। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। इस ग्रंथ में लेखक ने बताया है कि ईश्वर के कार्य मनुष्य की समझ से परे हैं और सांसारिक सुख संपत्ति व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ का सब कुछ नश्वर है। उपदेशक ग्रंथ का लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मनुष्य के सुख दुख और संपन्नता विपन्नता की प्राप्ति का आधार निश्चित नहीं किया जा सकता। पक्ष विपक्ष के तर्कों की जांच के बाद लेखक इसी उत्तर पर पहुंचता है कि ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, हम उसका प्रसन्नतापूर्वक उपभोग करें और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर की शरण जाएं, क्योंकि ईश्वर ही हमारे सुख और शांति का स्रोत हैं।

प्रज्ञा बुद्धिमान मनुष्य को नगर के 10 शासकों से अधिक शक्तिशाली बनाती है। संसार में ऐसा कोई धार्मिक नहीं जो भलाई ही करता और कभी पाप नहीं करता। लोग जो बातें कहते हैं उन सब पर ध्यान मत दो, नहीं तो तुम अपने नौकर को अपने को कोसते सुनोगे, क्योंकि तुम यह नहीं जानते हो कि तुमने कितनी बार दूसरों को कोसा है। श्रोताओ, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 7वें अध्याय के 19 से लेकर 22 तक के पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इन पदों में प्रज्ञा, विवेक और ज्ञान को गुणी व्यक्तियों की पहचान निरूपित किया गया है। इन गुणों के द्वारा ही मनुष्य यथार्थ शक्ति प्राप्त करता है। श्रोताओ, उपदेशक ग्रंथ का 7वां अध्याय दुनियावी सुख सुविधाओं के भ्रम और जिंदगी की यथार्थ वास्तविकताओं के बीच अंतर बताने वाली ज्ञान की बातों का संकलन है। यह सिखाता है कि अच्छी शोहरत, प्रतिष्ठा अथवा ख्याति धैर्य या सब्र से आती है, और फिर मृत्यु की वास्तविकता को पहचानना तथा उसे स्वीकार करना एक अर्थ

बारे में बुरा भला न सोचें या कहें, तो हम भी अन्यों के बारे में बुरा न सोचें या बुरा न बोलें। किसी को मत कोसो ताकि और कोई भी तुम्हें न कोसे। सातवें अध्याय के 23वें और 24वें पदों में उपदेशक कहता है, प्रज्ञा दुर्लभ है। प्रज्ञावान बनने की हमारी इच्छा केवल बुद्धि से पूरी नहीं होती, इसलिए यह स्वीकार करना कि जो कुछ इस धरती पर अस्तित्व में है वह हमारी समझ से परे है, विनम्रता का काम है। अस्तु, मनुष्य यह स्वीकार करे कि जिस ईश्वर ने उसे रचा वही सारी सृष्टि का कर्ता धरता है, उसकी महिमा अपरंपार है।

आगे उपदेशक ग्रंथ के 7वें अध्याय के 25वें पद में उपदेशक कहता है, मैंने सारे हृदय से यह जानने का प्रयत्न किया कि प्रज्ञा और बुद्धि क्या है, और यह समझा कि दुष्टता ना समझी और मूर्खता पागलपन है। श्रोताओ, दुष्टता किसी व्यक्ति की वह बुरी मानसिकता या स्वभाव है जो उसे जानबूझकर दूसरों को नुकसान पहुंचाने, दूसरों को कष्ट देने या अनैतिक कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यह स्वार्थ, क्रूरता और विद्वेष पर आधारित होती है। दूसरों को दुख पहुंचाना, छल कपट और षड्यंत्र में रमना तथा अहंकार और स्वार्थ में लिप्त रहना दुष्टता के प्रमुख लक्षण है। दूसरी ओर मूर्खता, अंग्रेजी में जिसे हम स्टुपिडिटी कहते हैं, मूल रूप से विवेक, तर्क और सही समझ के अभाव की स्थिति है, जहां व्यक्ति बिना परिणाम सोचे समझे कार्य करता है। यह अज्ञानता या किसी चीज का ज्ञान न होने से अलग है। मूर्खता प्रायः सही जानकारी होने के बावजूद गलत निर्णय लेने की प्रवृत्ति को दर्शाती है। उपदेशक कहता है कि दुष्टता और मूर्खता दोनों से बचना चाहिए, क्योंकि दुष्टता नासमझी और मूर्खता पागलपन है। श्रोताओ, 7वें अध्याय में उपदेशक जीवन के आंतरिक अर्थ को समझाने के लिए एक गहन और दार्शनिक खोज में लगा प्रतीत होता है। दुष्ट और मूर्ख व्यक्ति अच्छाई को देखने के बजाय जानबूझकर अज्ञानता और पाप की प्रकृति की खोज करते हैं। इसलिए उपदेशक इस नतीजे पर पहुंचता है कि बुराई और मूर्खता असल में बेमतलब और नुकसान पहुंचाने वाली हैं। वह इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित कराता है कि हालांकि प्रभु ईश्वर ने सत्य और सुंदर तरीके से सृष्टि की रचना की है, इंसानी मूर्खता और दुष्टता उसे खराब कर खुद अपनी जिंदगी को मुश्किल बना देती है। आगे 7वें अध्याय के अंतिम यानी कि 26 से लेकर 29 तक के पदों में उपदेशक कहता है, मैं यह समझता हूं कि कुछ स्त्रियां मृत्यु से भी कड़वी हैं, वे फंदे जैसी हैं, उनका हृदय जाल जैसा और उनके हाथ जंजीर जैसे हैं। जो ईश्वर को प्रिय है वही उनसे बच सकता है, किंतु पापी उनके जाल में फंसता है। उपदेशक कहता है कि अनुसंधान करते करते मैं इतना ही जान पाया, मैं अनुसंधान करता रहा किंतु मैं असफल रहा। मुझे 1000 में एक पुरुष मिला किंतु उन सबों में मुझे एक भी स्त्री नहीं मिली। अंत में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, ईश्वर ने मानव जीवन को सरल बनाया किंतु मनुष्य ने उसे तर्क वितर्क से जटिल बना दिया। श्रोताओ, ज्ञान की खोज में संलग्न उपदेशक सुलेमान समझ गया था कि कुछ स्त्रियां मृत्यु से भी अधिक कड़वी होती हैं। वे अपने करतूतों से या अपनी कड़वी भाषा से ऐसी हो सकती हैं। इसलिए कुछ स्त्रियां वह जाल है जिसमें पुरुष आसानी से फंस जाया करते हैं, किंतु जो व्यक्ति ईश्वर पर ध्यान लगाते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, वे उससे बच जाएंगे। जबकि जो पाप कर्मों में लगे रहते हैं, वे स्त्रियों द्वारा बिछाए जा

जाल में फंस जाते हैं। विधि विवरण ग्रंथ के 23वें अध्याय के 18वें पद के अनुसार ईश्वर का नियम है, कोई पुरुष या स्त्री मंदिर में होने वाले व्यभिचार के लिए अपने को अर्पित नहीं करेगी। श्रोताओ, सुलेमान ने उक्त पदों की रचना उस समय की होगी जब वह बूढ़ा हो चला था और उसकी पत्नियां उसे अन्य देवताओं की ओर रिझाने लगी थी। वस्तुतः श्रोताओ, उपदेशक ग्रंथ सुलेमान के पश्चाताप की कथा है। उसने इसकी रचना तब की थी जब उसे दुनियावी भोग विलास और वासना की कटु सच्चाई की जानकारी हो गई थी। जब उसने अपनी गलतियों को समझा तभी वह ईश्वर की ओर अभिमुख हुआ। उपदेशक कहता है कि उसे 1000 में एक पुरुष मिला, किंतु उन 1000 में उसे एक भी स्त्री नहीं मिली। बाइबल आचार्य राइट कहते हैं कि हैरम में या कई पत्नियों के साथ रहने वाला पुरुष कभी सुखी नहीं हो सकता। वह सुखी तब होगा जब वह अपनी एकमात्र और अच्छी पत्नी के साथ जीवन बिताएगा। फिर अपने निष्कर्ष में उपदेशक सुलेमान इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित कराता है कि ईश्वर ने मानव को पाप रहित बनाया था, किंतु आदि मानव आदम के समय से ही वह ईश्वर के खिलाफ पाप और बगावत की कई साजिशें रचता चला आ रहा है। इसीलिए अंतिम पद में कहता है, ईश्वर ने मानव जीवन को सरल बनाया, किंतु मनुष्य ने उसे तर्क वितर्क से जटिल बना दिया।

आप वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने इतालवी धर्माध्यक्षीय सम्मेलन की 82वीं सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, सुसमाचार से हमारे लिए विश्वास का जन्म होता है, जहां हम ख्रीस्त से भेंट करते हैं जो मृतकों में से जी उठकर आज भी कलीसिया में उपस्थित हैं। सुसमाचार को केंद्र बिंदु में लाना हम धर्माध्यक्षकों के लिए उत्साह का कारण बनता है। संत पापा ने चरवाहों के लिए चिंतन प्रस्तुत करते हुए कहा, हम खुद से यह पूछें, हम सुसमाचार प्रचार, धर्म शिक्षा, पूजन विधि, करुणा के कार्यों और अपने सामुदायिक जीवन में ईश्वर के किस चेहरे को चमकने देते हैं। संत पापा ने कहा, अतः ख्रिस्तीय जीवन की पहल करना सिर्फ संस्कारों के लिए तैयार करना नहीं है, बल्कि यह एक कोक की भांति है जहां समुदाय में विश्वास उत्पन्न होता है, जो विश्वासियों को ईश्वर से मिलन, उनके पास का अनंत जीवन की ओर अग्रसर करता है। संत पापा लियो ने इस भांति इतालवी धर्माध्यक्षों के धर्म सम्मेलन को इस बात की चुनौती दी कि वे अपने समुदाय को सजीव और स्वागत करने, यूखरिस्ट को जीवन का केंद्र बनाने, जहां गरीबों की सेवा बाह्य रूप में केवल नहीं की जाती, बल्कि वे हमारे भाई बहन बनते हैं जिनके द्वारा हम ईश्वर से बातें करते हैं, जहां हम युवाओं की आवाज को सुनते और उनके जीवन की कहानियों से अपने को वाकिफ करते हैं। कलीसिया में चरवाहों की बुलाहट के सार की याद दिलाते हुए संत पापा ने धर्माध्यक्षकों को गहराई से सुनने हेतु आह्वान किया। जहां सच्चा सुना जाता, वहां समुदाय अपने में सिमट कर नहीं रहता, बल्कि यह समझदारी और प्रेरिताई की जगह बन जाती है और इसके द्वारा हम स्वयं को नवीन बनाते हैं। संत पापा ने कहा, सिनोडालिटी की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए संत पापा ने धर्माध्यक्षकों से कहा कि ईश्वर हमें एक प्रजा के रूप में पवित्र करते हैं, अतः सिनोडल कलीसिया हर एक को पवित्र आत्मा में मिले वरदानों को साझा करने का निमंत्रण देता है, जहां हमारी सहभागिता, एकता और प्रेरिताई एक आवश्यक शैली, उत्तरदायित्व और योजना बनती है, जिनके माध्यम हम विभिन्न कृपाओं को सबों के साथ उदारता में बांटते हैं। अपने संबोधन के अंत में संत पापा ने कहा, ईश्वर हमसे कलीसिया में कामयाब होने हेतु संख्या के आधार पर मूल्यांकन करने को नहीं कहते हैं। उन्होंने हमारे बीच आने के लिए छोटा होने का मार्ग चुना। छोटेपन का यह मनोभाव ही कलीसिया की असली ताकत है। उन्होंने कहा, ऐसा करने हेतु हमें साहस की जरूरत है। संत पापा ने सुसमाचार प्रचार हेतु गठित पर्म धर्म पीठ समिति को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वे दुनिया भर के युवाओं में आध्यात्मिक गरीबी के संकट से निपटने की कोशिशों में मदद करें। संत पापा ने बुधवार को सुसमाचार प्रचार हेतु गठित पर्म धर्म पीठ के पूर्ण अधिवेशन में भाग ले रहे प्रतिभागियों से मुलाकात की और उन्हें अपने संदेश में युवाओं के मध्य सुसमाचार प्रचार करने का आह्वान किया। संत पापा ने अपने संबोधन में कहा, दुनिया आशा की प्यासी है, अतः सुसमाचार प्रचार के माध्यम हम विश्वास को पुनः स्थापित करते और अपने को आशा में मजबूत होता पाते हैं, क्योंकि सुसमाचार की घोषणा हम में उम्मीद जगाती है। उन्होंने कहा, सुसमाचार की घोषणा इस बात की मांग करती है कि यह वैश्विक कलीसिया और स्थानीय समुदायों में हर कार्य का आधार हो। सिर्फ ऐसा करने के द्वारा ही विश्वास की खूबसूरती को फिर से खोजा जा सकता है और विश्वसनीयता को बेहतर रूप में प्रकट किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कलीसिया की प्रेरिताई मानवता में विश्वास की नींव को बनाए रखने में मदद करती है, ताकि हमारा भविष्य शांति, न्याय, आजादी और भाईचारे से भरा हो। संत पापा ने कहा, बहुत से युवा आध्यात्मिकता की भूख का एहसास कर रहे हैं और कलीसिया निरंतर उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए सुसमाचार प्रचार के नए रूपों की खोज करने को कही जाती है। उधर वैटिकन समाचार को दिए गए एक साक्षात्कार में शिकागो के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल ब्लेज क्यूपिच ने कहा कि संत पापा लियो 14वें का पहला विश्व प्रेरितिक पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास
इस बात को सुदृढ़ करता है कि नई तकनीकी में मानवीय क्षमता से परे जाने की योग्यता है, और संत पापा हमें इसके द्वारा मानवता में आने वाली चुनौतियों का सामना करने हेतु ध्यान आकर्षित कराते हैं। कार्डिनल क्यूपिज ने कहा, संत पापा लियो का यह विश्व प्रेरितिक पत्र हमारे लिए एक नया लेंस प्रदान करता है, जिससे हम कलिसिया की पूरी सामाजिक धर्म सिद्धांत की शिक्षा को नए रूप में देख और पढ़ सकते हैं। आने वाले महीनों में संत पापा इटली भर में कई प्रेरितिक दौरा करेंगे, जिसमें उत्तरी इटली के क्षेत्र इमिलिया रोमानिया का रिमिनी भी शामिल है। इस यात्रा में संत पापा शनिवार 22 अगस्त को लोगों के बीच दोस्ती हेतु संगोष्ठी के 47वें संस्करण में शामिल होंगे। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
2: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और फादर संजय एक्का। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। इस ग्रंथ में लेखक ने बताया है कि ईश्वर के कार्य मनुष्य की समझ से परे हैं और सांसारिक सुख संपत्ति व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ का सब कुछ नश्वर है। उपदेशक ग्रंथ का लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मनुष्य के सुख दुख और संपन्नता विपन्नता की प्राप्ति का आधार निश्चित नहीं किया जा सकता। पक्ष विपक्ष के तर्कों की जांच के बाद लेखक इसी उत्तर पर पहुंचता है कि ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, हम उसका प्रसन्नता पूर्वक उपभोग करें और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर की शरण जाएं, क्योंकि ईश्वर ही हमारे सुख और शांति का स्रोत हैं।

प्रज्ञा बुद्धिमान मनुष्य को नगर के 10 शासकों से अधिक शक्तिशाली बनाती है। संसार में ऐसा कोई धार्मिक नहीं जो भलाई ही करता और कभी पाप नहीं करता। लोग जो बातें कहते हैं उन सब पर ध्यान मत दो, नहीं तो तुम अपने नौकर को अपने को कोसते सुनोगे, क्योंकि तुम यह नहीं जानते हो कि तुमने कितनी बार दूसरों को कोसा है। श्रोताओ, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 7वें अध्याय के 19 से लेकर 22 तक के पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इन पदों में प्रज्ञा, विवेक और ज्ञान को गुणी व्यक्तियों की पहचान निरूपित किया गया है। इन गुणों के द्वारा ही मनुष्य यथार्थ शक्ति प्राप्त करता है। श्रोताओ, उपदेशक ग्रंथ का 7वां अध्याय दुनियावी सुख सुविधाओं के भ्रम और जिंदगी की यथार्थ वास्तविकताओं के बीच अंतर बताने वाली ज्ञान की बातों का संकलन है। यह सिखाता है कि अच्छी शोहरत, प्रतिष्ठा अथवा ख्याति धैर्य या सब्र से आती है, और फिर मृत्यु की वास्तविकता को पहचानना तथा उसे स्वीकार करना एक अर्थपूर्ण जिंदगी की कुंजी है। श्रोताओ, इस स्थल पर उपदेशक बड़ी समझदारी से इस बात को प्रस्तुत कर देता है कि हम हमारे लिए दूसरों की बातों को बहुत गंभीरता से लेते हैं, किंतु अन्यों के बारे में कुछ भी बक देते हैं। प्रायः बिना सोचे समझे अनर्गल बात कह देते हैं, जो कि अनुचित है, इसलिए कि जब दूसरे, यहाँ तक कि हमारे अधीन काम करने वाले, ऐसी बातें हमारे बारे में कहने लगते हैं तब हमारी भावनाओं को ठेस लगती है। अस्तु, किसी के भी बारे में अनर्गल न बका जाए। यदि हम चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में बुरा भला न सोचें या कहें, तो हम भी अन्यों के बारे में बुरा न सोचें या बुरा न बोलें। किसी को मत कोसो ताकि और कोई भी तुम्हें न कोसे। 7वें अध्याय के 23वें और 24वें पदों में उपदेशक कहता है, प्रज्ञा दुर्लभ है। प्रज्ञावान बनने की हमारी इच्छा केवल बुद्धि से पूरी नहीं होती, इसलिए यह स्वीकार करना कि जो कुछ इस धरती पर अस्तित्व में है वह हमारी समझ से परे है, विनम्रता का काम है। अस्तु, मनुष्य यह स्वीकार करे कि जिस ईश्वर ने उसे रचा वही सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता है, उसकी महिमा अपरंपार है।

आगे उपदेशक ग्रंथ के सातवें अध्याय के 25वें पद में उपदेशक कहता है, मैंने सारे हृदय से यह जानने का प्रयत्न किया कि प्रज्ञा और बुद्धि क्या है, और यह समझा कि दुष्टता ना समझी और मूर्खता पागलपन है। श्रोताओ, दुष्टता किसी व्यक्ति की वह बुरी मानसिकता या स्वभाव है जो उसे जानबूझकर दूसरों को नुकसान पहुंचाने, दूसरों को कष्ट देने या अनैतिक कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यह स्वार्थ, क्रूरता और विद्वेष पर आधारित होती है। दूसरों को दुख पहुंचाना, छल कपट और षड्यंत्र में रमना तथा अहंकार और स्वार्थ में लिप्त रहना दुष्टता के प्रमुख लक्षण हैं। दूसरी ओर मूर्खता, अंग्रेजी में जिसे हम स्टुपिडिटी कहते हैं, मूल रूप से विवेक, तर्क और सही समझ के अभाव की स्थिति है, जहां व्यक्ति बिना परिणाम सोचे समझे कार्य करता है। यह अज्ञानता या किसी चीज का ज्ञान न होने से अलग है। मूर्खता प्रायः सही जानकारी होने के बावजूद गलत निर्णय लेने की प्रवृत्ति को दर्शाती है। उपदेशक कहता है कि दुष्टता और मूर्खता दोनों से बचना चाहिए, क्योंकि दुष्टता ना समझी और मूर्खता पागलपन है। श्रोताओ, सातवें अध्याय में उपदेशक जीवन के आंतरिक अर्थ को समझाने के लिए एक गहन और दार्शनिक खोज में लगा प्रतीत होता है। दुष्ट और मूर्ख व्यक्ति अच्छाई को देखने के बजाय जानबूझकर अज्ञानता और पाप की प्रकृति की खोज करते हैं। इसलिए उपदेशक इस नतीजे पर पहुंचता है कि बुराई और मूर्खता असल में बेमतलब और नुकसान पहुंचाने वाली हैं। वह इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित कराता है कि हालांकि प्रभु ईश्वर ने सत्य और सुंदर तरीके से सृष्टि की रचना की है, इंसानी मूर्खता और दुष्टता उसे खराब कर खुद अपनी जिंदगी को मुश्किल बना देती है। आगे सातवें अध्याय के अंतिम यानी कि 26 से लेकर 29 तक के पदों में उपदेशक कहता है, मैं यह समझता हूं कि कुछ स्त्रियां मृत्यु से भी कड़वी हैं, वे फंदे जैसी हैं, उनका हृदय जाल जैसा और उनके हाथ जंजीर जैसे हैं। जो ईश्वर को प्रिय है वही उनसे बच सकता है, किंतु पापी उनके जाल में फंसता है। उपदेशक कहता है कि अनुसंधान करते करते मैं इतना ही जान पाया, मैं अनुसंधान करता रहा किंतु मैं असफल रहा, मुझे हजार में एक पुरुष मिला किंतु उन सबों में मुझे एक भी स्त्री नहीं मिली। अंत में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, ईश्वर ने मानव जीवन को सरल बनाया किंतु मनुष्य ने उसे तर्क वितर्क से जटिल बना दिया। श्रोताओ, ज्ञान की खोज में संलग्न उपदेशक सुलेमान समझ गया था कि कुछ स्त्रियां मृत्यु से भी अधिक कड़वी होती हैं, वे अपने करतूतों से या अपनी कड़वी भाषा से ऐसी हो सकती हैं। इसलिए कुछ स्त्रियां वह जाल है जिसमें पुरुष आसानी से फंस जाया करते हैं, किंतु जो व्यक्ति ईश्वर पर ध्यान लगाते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, वे उससे बच जाएंगे। जबकि जो पाप कर्मों में लगे रहते हैं वे स्त्रियों द्वारा बिछाए जाल में फंस जाते हैं। विधि विवरण ग्रंथ के 23वें अध्याय के 18वें पद के अनुसार ईश्वर का नियम है, कोई पुरुष या स्त्री मंदिर में होने वाले व्यभिचार के लिए अपने को अर्पित नहीं करेगी। श्रोताओं, सुलेमान ने उक्त पदों की रचना उस समय की होगी जब वह बूढ़ा हो चला था और उसकी पत्नियां उसे अन्य देवताओं की ओर रिझाने लगी थीं। वस्तुतः श्रोताओं, उपदेशक ग्रंथ सुलेमान के पश्चाताप की कथा है। उसने इसकी रचना तब की थी जब उसे दुनियावी भोग विलास और वासना की कटु सच्चाई की जानकारी हो गई थी। जब उसने अपनी गलतियों को समझा तभी वह ईश्वर की ओर अभिमुख हुआ। उपदेशक कहता है कि उसे हजार में एक पुरुष मिला किंतु उन हजार में उसे एक भी स्त्री नहीं मिली। बाइबल आचार्य राइट कहते हैं कि हैरम में या कई पत्नियों के साथ रहने वाला पुरुष कभी सुखी नहीं हो सकता। वह सुखी तब होगा जब वह अपनी एकमात्र और अच्छी पत्नी के साथ जीवन बिताएगा।
फिर अपने निष्कर्ष में उपदेशक सुलेमान इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित कराता है कि ईश्वर ने मानव को पाप रहित बनाया था, किंतु आदि मानव आदम के समय से ही वह ईश्वर के खिलाफ पाप और बगावत की कई साजिशें रचता चला आ रहा है। इसीलिए अंतिम पद में कहता है, ईश्वर ने मानव जीवन को सरल बनाया, किंतु मनुष्य ने उसे तर्क वितर्क से जटिल बना दिया।

आप वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने इतालवी धर्माध्यक्षीय सम्मेलन की 22वीं सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, सुसमाचार से हमारे लिए विश्वास का जन्म होता है, जहां हम ख्रीस्त से भेंट करते हैं जो मृतकों में से जी उठकर आज भी कलीसिया में उपस्थित हैं। सुसमाचार को केंद्र बिंदु में लाना हम धर्माधर्शकों के लिए उत्साह का कारण बनता है। संत पापा ने चरवाहों के लिए चिंतन प्रस्तुत करते हुए कहा, हम खुद से यह पूछें, हम सुसमाचार प्रचार, धर्म शिक्षा, पूजन विधि, करुणा के कार्यों और अपने सामुदायिक जीवन में ईश्वर के किस चेहरे को चमकने देते हैं। संत पापा ने कहा, अतः ख्रिस्तीय जीवन की पहल करना सिर्फ संस्कारों के लिए तैयार करना नहीं है, बल्कि यह एक कोक की भांति है जहां समुदाय में विश्वास उत्पन्न होता है, जो विश्वासियों को ईश्वर से मिलन, उनके पास का अनंत जीवन की ओर अग्रसर करता है। संत पापा लियो ने इस भांति इतालवी धर्माध्यक्षों के धर्म सम्मेलन को इस बात की चुनौती दी कि वे अपने समुदाय को सजीव और स्वागत करने, यूखरिस्त को जीवन का केंद्र बनाने, जहां गरीबों की सेवा बाह्य रूप में केवल नहीं की जाती, बल्कि वे हमारे भाई बहन बनते हैं जिनके द्वारा हम ईश्वर से बातें करते हैं, जहाँ हम युवाओं की आवाज को सुनते और उनके जीवन की कहानियों से अपने को वाकिफ करते हैं। कलीसिया में चरवाहों की बुलाहट के सार की याद दिलाते हुए संत पापा ने धर्माधर्शकों को गहराई से सुनने हेतु आह्वान किया। जहां सच्चा सुना जाता, वहां समुदाय अपने में सिमट कर नहीं रहता, बल्कि यह समझदारी और प्रेरिताई की जगह बन जाती है और इसके द्वारा हम स्वयं को नवीन बनाते हैं। संत पापा ने कहा, सिनोडालिटी की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए संत पापा ने धर्माध्यक्षकों से कहा कि ईश्वर हमें एक प्रजा के रूप में पवित्र करते हैं, अतः सिनोडल कलीसिया हर एक को पवित्र आत्मा में मिले वरदानों को साझा करने का निमंत्रण देता है, जहां हमारी सहभागिता, एकता और प्रेरिताई एक आवश्यक शैली, उत्तरदायित्व और योजना बनती है, जिनके माध्यम हम विभिन्न कृपाओं को सबों के साथ उदारता में बांटते हैं। अपने संबोधन के अंत में संत पापा ने कहा, ईश्वर हमसे कलीसिया में कामयाब होने हेतु संख्या के आधार पर मूल्यांकन करने को नहीं कहते हैं। उन्होंने हमारे बीच आने के लिए छोटा होने का मार्ग चुना। छोटेपन का यह मनोभाव ही कलीसिया की असली ताकत है। उन्होंने कहा, ऐसा करने हेतु हमें साहस की जरूरत है। संत पापा ने सुसमाचार प्रचार हेतु गठित पर्म धर्म पीठ समिति को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वे दुनिया भर के युवाओं में आध्यात्मिक गरीबी के संकट से निपटने की कोशिशों में मदद करें। संत पापा ने बुधवार को सुसमाचार प्रचार हेतु गठित पर्म धर्म पीठ के पूर्ण अधिवेशन में भाग ले रहे प्रतिभागियों से मुलाकात की और उन्हें अपने संदेश में युवाओं के मध्य सुसमाचार प्रचार करने का आह्वान किया। संत पापा ने अपने संबोधन में कहा, दुनिया आशा की प्यासी है, अतः सुसमाचार प्रचार के माध्यम हम विश्वास को पुनः स्थापित करते और अपने को आशा में मजबूत होता पाते हैं, क्योंकि सुसमाचार की घोषणा हम में उम्मीद जगाती है। उन्होंने कहा, सुसमाचार की घोषणा इस बात की मांग करती है कि यह वैश्विक कलीसिया और स्थानीय समुदायों में हर कार्य का आधार हो। सिर्फ ऐसा करने के द्वारा ही विश्वास की खूबसूरती को फिर से खोजा जा सकता है और विश्वसनीयता को बेहतर रूप में प्रकट किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कलीसिया की प्रेरिताई मानवता में विश्वास की नींव को बनाए रखने में मदद करती है, ताकि हमारा भविष्य शांति, न्याय, आजादी और भाईचारे से भरा हो। संत पापा ने कहा, बहुत से युवा आध्यात्मिकता की भूख का एहसास कर रहे हैं और कलीसिया निरंतर उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए सुसमाचार प्रचार के नए रूपों की खोज करने को कही जाती है। उधर वैटिकन समाचार को दिए गए एक साक्षात्कार में शिकागो के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल ब्लेज क्यूपिच ने कहा कि संत पापा लियो 14वें का पहला विश्व प्रेरितिक पत्र मैग्निफिका ह्यूमनिटास
इस बात को सुदृढ़ करता है कि नई तकनीकी में मानवीय क्षमता से परे जाने की योग्यता है और संत पापा हमें इसके द्वारा मानवता में आने वाली चुनौतियों का सामना करने हेतु ध्यान आकर्षित कराते हैं। कार्डिनल क्यूपिज ने कहा, संत पापा लियो का यह विश्व प्रेरित पत्र हमारे लिए एक नया लेंस प्रदान करता है जिससे हम कलीसिया की पूरी सामाजिक धर्म सिद्धांत की शिक्षा को नए रूप में देख और पढ़ सकते हैं। आने वाले महीनों में संत पापा इटली भर में कई प्रेरितिक दौरा करेंगे जिसमें उत्तरी इटली के क्षेत्र एमिलिया रोमानिया का रिमिनी भी शामिल है। इस यात्रा में संत पापा शनिवार 22 अगस्त को लोगों के बीच दोस्ती हेतु संगोष्ठी के 47वें संस्करण में शामिल होंगे। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।